याज्ञा करामः। सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: श्रीवेवा
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिन्म सुविशुद्धे सिलु सुविशुद्धतावे उल्पत बोहान से में एही नोबहान से गे आत्मेनंगे आनुभावेन में पांडु परिशुद्धवात करन में नप्यायदिब अपेसे अदुने में पांडु रापु

0: अपविश्वासक भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से स्वामी भगवान से उतानु से स्वामिनी भगवान से नवत वडिन सेक
0: एहिन प्यानी उन्वांसिगे मरणयात् उत्तानयात् सीपत् करमिन जीवनदायक फूप्यात् गैलवीमदायक कुशलानात् तपय ओबट पुद करमु ओब हम वे सिटिमिन ओबट सेवे करन्नट अप सुदुस्सन वचन सलकीम गैन अपि ओबट तुति पुदमु क्रिस्तुन महान्सिगे श्री सर्रेटात् श्री रुधिरेटात् सहभागी वन अप सैम शुद्धात्मनन् विसिन एक्सत् करनु लबन लेस अपि अवनतव आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वे पेतर पवत्ना उबगे सुदो स्वभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम स्वभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत तैतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अपस्यालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमर्यावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन उबगे कमत्ते टुकल सिलु शुद्धवंते इंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन हा समग उबट प्रशांत साकिरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येशुस क्रिस्तुन महंसे मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहांसे मगिन्द उन्वहांसे समगद उन्वहांसे करेद सियलु बलते देवी प्याननी शुद्धात्मनन् हा समग एक्वडवासन्ना वू ओब वहांसेट सकल गौरवयात् महिमया